तो सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे

0: मेरे बाबा श्री सत्य साई एक बार क्षमा कर दो. सो प्लीज पार्डन मी वंस एंड ओनली वंस मेरे बाबा माय यू नो माय लॉर्ड श्री सत्य साई. दैट वाज द ब्यूटिफुल वॉइस ऑफ जेसन नायकर. आई होप यू एंजॉयिंग ऑल दीज स्पिरिचुअल डिवोशनल ट्यून्स राइट हियर ऑन भक्ति संगीत. स्टे ट्यून्ड.
1: You're listening to Bhakti Sangeet. You're listening to Bhakti Sangeet. Sundays, 5 to 7 p.m. Lotus FM.
0: Bhakti Sangeet, may all the sacred notes that are being aired right here on Lotus FM uplift your soul and bring you closer to the divine. We'll now be listening to T.L. Maharajan in a devotional song for Lord Ganesha.

0: बर्देज चोला मेरा या मौला अली, बर्दे झोली मेरा या मौला अली, लौट कर जाऊंगा मैं न खाली कभी। यस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कलाम एंड ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड। इट्स अ पिटी आई वुड नॉट बी एबल टू प्ले द एंटायर कलाम ओइंग टू टाइम कंस्ट्रेंट, बट माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन अंदाज में इन्होंने इस कलाम को पेश की है। शुक्रिया to all of you that have tuned in. And Riz 5, yes, after quite a while, I see Riz 5 is making a comeback on the air. Shahid Mia, shukriya. Mahmood Sheikh Chisti, jazakumullah, ya apki mohabbat hai bhai sahab. Aslam Suleiman of Cape Town, Abbas Sheikh, also listening to you from North Beach. And then we have Suleiman, our man Suleiman from Cape Town as well, and Mohammedan and Fatima Suleiman also from Chatsworth.
1: हमारी ये रंगीन शाम है और ये शाम आपके नाम आप ये भी महमूद के साथ है। मैं आपका मेजबान हूँ।
0: जी हाँ, पीवी महमूद के साथ है। आइए अब हजूर गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर अली रहमा की बेकस पनाह में चलते हैं।